0: 6.9 इंच शानदार डिस्प्ले एआई पावर्ड कैमरा दुई वर्ष को वारंटी सहित रेडमी ए सेवेन में 5200 mAh तथा रेडमी ए सेवेन प्रो में 6000 mAh पावरफुल बैटरी को साथ थप अत्याधुनिक विशेषता मन जित बारम्बार
1: रेडियो भेरी एफएम

0: तो छैन यार।
1: शहर में भीड़ छ मान्छे अकेला, टेंशन गर्मी ठेलम ठेला, हर कोई जिंदगी से धकेला, सानो बाप मा ठूलो झमेला।

0: रेडियो भेरी एफएम 98.6 वैक्सी 2.7 मेगाहर्ट्ज
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 5 बजे को छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी